0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तो इसीलिए जरा अकल भी तो इस्तेमाल किया करें ना, कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी को पकड़ाने के लिए अबू बकर शोर कर रहा है। भई ये ऊपर खड़े हैं, उन्होंने तो नहीं सुना है, हमने कहां से सुन लिया। 1400 साल के बाद, 1200 साल के बाद किताबें लिखने की, शोर शोर किया और शोर किया, तो अकल से भी ये बात गलत। और नकल से बात क्यों गलत है कि अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब है ना, वो तो अलीम बिज़ात सुदूर है, आलिम माकाना व मायकून है। अल्लाह के तो इल्म में है ना कि क़यामत तक कैसे कैसे लोग पैदा होंगे, कैसे कैसे लोग अम्बिया पे एतराज़ करेंगे, सहाबा पे एतराज़ करेंगे, आले बैत पे एतराज़ करेंगे, अइमे मुहद्दिसीन पे एतराज़ करेंगे, फुकहा पे एतराज़ करेंगे, उलमा व कुरा पे एतराज़ करेंगे। तो उसकी शान है, इल्म है, हिकमत है कि अल्लाह ने कुरान में लफ्जी वो इरशाद फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। याद रखो, दो लफ्ज होते हैं, एक है ला तखफ, एक है ला तहज़न। हमेशा दिल में रखो, जब जाती डर हो तो वहां लफ्ज ला तखफ होता है। हमेशा याद रखें, जब बंदे को अपना डर हो। अल्लाह ने फरमाया,
2: वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से खुलफाए राशिदीन की मनकबत व अजमत, असहाबे रसूल की सिदाकत व हक्कानियत, मसलए खिलाफत और उसी ज़मन में सबसे पहला मकाम जो अल्लाह ने यार ग़ार सैयदना अबी बकर सिद्दीक को अता फरमाया, उसमें मनाक़िब सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला और उसके बाद आखिर बाब में मताइन का जिक्र कि जो लोग सैयदना अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तान करते हैं या एतराज़ करते हैं, ताकि अहल सुन्नत वल जमात के लोगों के जहन में शकूक व शुबहात पैदा किए जाए, और ये हर बातिल फिरके का काम ही यही होता है दरअसल। और ये फितरत इंसानी है कि जब उसके दिमाग में कोई शुबह डाल दिया जाए तो फिर वो पहले वाली अकीदत और मोहब्बत कायम नहीं है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने उन मताइन का भी जवाब दिया है, तो इंशाअल्लाह हम भी उसी ज़मन में कोशिश कर रहे हैं ताकि जब मनाकिब और खुलफाए राशिदीन की सीरत आमतुन्नास के दिमाग में कानून तक पहुंचे तो उन पर जो असहाबे रसूल और खुसूसन खुलफाए राशिदीन पर एतराज़ात हैं वो भी और उनके जवाब भी, ताकि शायद अल्लाह तबारक व तआला किसी की हिदायत का जरिया बना दे। जहां मताइने अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में सबसे पहले मैंने अर्ज किया था सबका दर्स में कि मालिक इब्ने नुवैरा के बारे में, और उसी ज़मन में एक तान सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे यह किया जाता है कि उन्होंने अपने बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नामजद कर दिया और बाकायदा तहरीर लिख के हुक्म दे दिया।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इसी तरह हजूर ने फिर बीबी फातिमा ज़हरा को भी घर बना के दे दिया था और हेबा करके कब्ज दे दिया। इसी तरह हजरत उसामा जिनको आपने, हजरत के बेटे का बेटा है उसामा इब्ने ज़ैद, उनको भी आपने घर बना के हेबा करके मालिक बना दिया। वो तो मालिक बन गया जिंदगी। इसीलिए तो याद रखें कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात का वक्त आया है और आप अभी जिंदा हैं, तो आपने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे, बीबी आयशा के दरवाजे पे जाओ और जाके सलाम कहो और कहो कि उमर सलाम कहता है। ला तकुल्लहा अमीर अल मोमिनीन, ये ना कहना कि बादशाह सलाम कहता है, सिर्फ मेरा नाम लेना। क्यों? अब मैं बादशाह नहीं रहा, बस अब मैं मौत के करीब आ गया। और दूसरी बात यह है कि ये मैं बादशाह बन के नहीं मांग रहा, बल्कि मैं शायर बन के मांग रहा। बीबी से जाके अर्ज करें कि अगर बीबी इजाजत दे दे तो मैं भी हुजूर के कदमों में हजरत सिद्दीक के साथ रौजे में दफन हो जाऊं। और चूंकि कमरा तो बीबी आयशा का है, हुजरा उनका है, जब तक वो इजाजत न दे मैं कैसे दफन हो सकता हूं। और अगर बीबी इजाजत न दे तो फिर मुझे जन्नतुल बकी वगैरह कर दफन किया जाए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आए, बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आके अर्ज किया। बीबी साहिबा अंदर बैठी रो रही थी सैयदना उमर के जख्मी होने की वजह से। उनने कहा कि बेटे, अब उमर ने चूंकि पैगाम भेजा है, मेरी तब दिल तो ये चाहता था कि इसका कब्र में मैं दफन हुई जो जगह है, ताकि एक हजूर पाक की मदार होगी, एक मेरे अब्बे की होगी और एक मेरी होगी और एक फिर ईसा इब्ने मरियम की होगी। लेकिन अब उमर ने मांग लिया है, शायद अल्लाह को यही मंजूर था, तो मैं अपनी जगह को हजरत उमर के लिए वक्त करती हूँ। मेरी तरफ से इजाजत है कि हजरत उमर को दफन किया जाए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जब आए, दूर से आप देख रहे थे, तो पहला पहली दूर से नजर पड़ी तो पूछा कि क्या हुआ। तुमने कहा कि अब शरिया अमीर अल मोमिनीन, मुबारक हो, बीबी आयशा ने आपको रौजे में दफन होने की इजाजत दे दी है। अब देखें सहाबा का एहतियात। लोग तो कहते हैं ना, सहाबा ने फिदक नहीं दिया, वर्षा नहीं दिया, विरास नहीं दिया। उमर ने कहा, मेरे बेटे अब्दुल रहमान बात सुनो, मैं जब फौत हो जाऊं, मुझे गुस्ल दे दिया जाए, तजहीज हो जाए, तकफीर हो जाए, तो फिर मेरा जनाजा लेके बीबी आयशा के दरवाजे पे रखना। हो सकता है उन्होंने मेरी इज्जत रखने में इजाजत दे दी हो कि कल उमर बच जाए, अमीरुल मोमिनीन बन जाए, बादशाह है, खलीफा है, कहेगा मैंने सवाल किया था और बीबी आयशा ने नहीं माना, तो इसलिए मेरी मैयत को ले जाना उनके दरवाजे पे और फिर कहना कि उमर की मैयत ले आए हैं, आपकी इजाजत है हम दफन करें, अगर इजाजत दे तो दफन, अगर फिर भी बीबी आयशा इजाजत ना दे तो मुझे दफन निकल। जो लोग इतना डर रहे हैं वो नबी का भी रास खा जाए। तो इससे वाजे हो गया कि वो घर जो थे वो तो बीबियों की मिल्कियत थे, उनमें मीरास के पैदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, और उसके बाद बाकायदा ये दोनों की किताबों में रिवायत मौजूद है, अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में भी मौजूद है और अहले तशय्यो की किताबों में भी मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये बातें गुजर गईं, वक्त गुजर गया, तो हजरत जा अला बाब फातिमा, हजरत अबू बकर बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आए हैं। और गर्मी का शदीद दिन था, जबरदस्त धूप पड़ रही थी और हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुंडी खटखटाई। हजरत अली तशरीफ ले आए, उन्होंने कहा कि या खलीफा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी के खलीफा इस वक्त और इस गर्मी में। आपने फरमाया, हजरत अली जाके बीबी फातिमा ज़हरा से मेरे बारे में अर्ज कर दो कि अबू बकर दरवाजे पे खड़ा है और वो कहता है मैं इसी गर्मी में खड़ा रहूंगा जब तक कि आप मुझे माफ नहीं कर देंगी, क्योंकि आप तो बिला वजह नाराज हो गई, मैंने तो हदीस सुनाई आपके अब्बा की और मैंने उसी बात पे अमल किया जिस पे अमल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अगर आपको मेरी जायदाद चाहिए तो मैं तो अब भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बिला वजह आप नाराज तो ना हो मुझ पर। और साथ हजरत अली से कहा कि बीबी फातिमा, अगर ज्यादा जलाल और गुस्से में हूं तो अली तुम भी मेरी सिफारिश कर दो। ये दोनों किताबों में मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए और आगे कहा कि फातिमा, देखा अबू बकर धूप पे खड़ा है। तो बीबी फातिमा ने अंदर से कहा कि अबू बकर, मैं बिल्कुल राजी हो गई हूं। और एक हदीस में आता है फराजियत फजाहकत, बीबी साहिबा राजी भी हो गई, खुश भी हो गई और हजरत अबू बकर से कलाम भी फरमाया और फरमाया कि देखो अब तुम धूप में आ गए मुझे मनाने के लिए। उन्होंने कहा, बीबी आप तो नाराज खुद हजूर की हदीस पे हुई है, मुझ में तो नाराज हुई नहीं आप, लेकिन मैं फिर भी माफी के लिए आया हूं। میں تو پھر بھی معافی دینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو مقام بخشا ہے، اللہ نے جو آپ کو شان بخشی ہے، آپ حضور کا جگر گوشا ہیں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ نبی کی بیوی مجھ سے بیٹی نفس سے ناراض ہو جائے؟ تو بی بی صاحبہ راضی ہو گئی، تو جب بی بی صاحبہ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا، جھگڑا بھی تھا راضی ہو گئی، تو آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ بی بی صاحبہ تو راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن ہم 1400 سال کے بعد راضی نہ ہوں، تو اس کا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اب ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ دل میں بغض تھا، غصہ تھا، اس وقت ظاہری سیاست کے طور پہ تو ان کے دروازے پہ چلے گئے، لیکن اپنی ناراضگی کو چھپائے رکھا، تاکہ بی بی جب فوت ہو گئی تو ابو بکر جنازے میں بھی نہیں آئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، حقیقت اصل میں بعض روایات تو یہ بھی ملتی ہیں کہ خود جنازہ پڑھایا ابو بکر نہ آنا تو نہ آنا رہا، آپ جب جنازے میں آئے تو حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی چھوٹے ہیں، حضرت علی بھی، انہوں نے کہا حق تو میرا ہے، لیکن ابو بکر اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ آپ کو کھڑا کیا ہے، تو ہم آپ کے آگے کیسے کھڑے، لہذا فاطمہ کا جنازہ بھی تم پڑھا۔ بعض روایات میں یہ، اچھا اگر ہم یہ روایات نہ بھی مانیں تو بعض روایات جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے خود وصیت فرمائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا بی بی فاطمہ الزہرا نے کہ اسماء آپ مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے دفن کر دیں تاکہ میری طبیعت یہ بھی گوارا نہیں کرتی، الحمدللہ زندگی میں میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह खुलफाए राशिदीन की अजमत शान के बारे में जो सिलसिला दर्स अल्लाह की तौफीक और रहमत से जारी है, वो सैयदना उमर की मनकबत, फजाइल, शान, अजमत के बयान में हम पहुंचे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने जो शान अता फरमाई है वो कायनात में बहुत कम लोगों को मिली, बल्कि शेखैन की हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, और याद रखें कि अल्लाह के नबी का ख्वाब जो है वो वाही होती है। हजूर ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक कुआं है और मैं वहां डोल खींच रहा हूं। उन्होंने फरमाया मैंने डोल खींचे जितना अल्लाह ने चाहा। فَأَخَذَ الدَّلْوُ مِنِّي أَبَا بَكْرٍ, फिर वो डोल जो है सैयदना अबू बकर ने मुझसे ले लिया, उन्होंने भी खींचा, ज़नूबन औ ज़नूबैन, दो या एक डोल उन्होंने खींचा, लेकिन फी हिज़ा अब फरमाया उनके खींचने में कुछ कमजोरी थी। उसके बाद फरमाया कि फिर हजरत उमर ने ले लिया, फरमाया कि हजरत उमर ने ले लिया, ओ ऐसा अबकरी और ऐसा कवि आदमी मैंने नहीं देखा कि उसने पूरी जमीन जो थी सबको जल थल कर दिया। तो इसी से सहाबा ने फिर ताबीर ली कि सैयदना उमर ने आकर दीन इस्लाम को पूरे आलम में मशारिक अल मगारिब अल अर्ज तक उस रहमत के पानी को पहुंचा दिया। इसी तरह सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों में हैं कि जिनकी शान अल्लाह ने तौरात और इंजील में भी बयान कर दी, यानी जैसे मेरे आका की शान है, जैसे मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो तौरात में भी है, इंजील में भी है, कुतुब साबका में भी है, हर अंबिया अलैहिम सलाम की जबान मुबारक पे है। इसी तरह अल्लाह की शान है कि हजरत उमर भी उन लोगों में है जिनका जिक्र तौरात इंजील में भी, बल्कि उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये अबू सुफियान की बेटी है और सैयदना मुआविया की बहन है, उम्महातुल मोमिनीन हैं, ज़ौजाए मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, हजूर की बीवी हैं, और ये वो शान वाली बीवी हैं जिनका निकाह जो है नज्जाशी बादशाह ने किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हक़ल महर भी उसने खुद अदा

उनका नाम जमात खाना रखा हुआ है, बाद ने उनका नाम इमाम बारगाह रखा हुआ है, बाद ने उसका नाम माबद का जो है। ये अल्लाह की कुदरत है कि अहले सुन्नत वल जमात को ये शर्फ मिला है कि उनकी इबादत का नाम मस्जिद है, वरना और किसी की इबादत का नाम मस्जिद नहीं होगा। क्योंकि मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी से जो रिश्ता है वो भी तो अहले सुन्नत वल जमात का है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें मेराज कितनी शान वाली बात है, लेकिन अल्लाह ने भी दोनों मस्जिदों का जिक्र किया, वरना मक्का भी फरमा सकते थे, शाम भी फरमा सकते थे, लेकिन मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा व अन्नल मसाजिद लिल्लाह इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। इसी तरह पूरी दुनिया में चले जाए, कोई सौम्या कहलाएगा, कोई कनीसा कहलाएगा, कोई गुरुद्वारा कहलाएगा, कोई मंदिर कहलाएगा, कोई इमाम बारगाह कहलाएगा, कोई जमात खाना कहलाएगा, लेकिन मस्जिद कोई नहीं कहलाता वहां सिवाय अहले सुन्नत वल जमात। तो इसी तरह वो फरमाती है कि हम एक हमारा गुजर जो है मसीहियों की ईसाइयों की एक इबादत खाने पे हुआ, जिसको आजकल हम गिरजा कहते हैं। अच्छा वैसे खुदा की शान है कि लफ्ज भी अजीब है गिरजा, इसको आहिस्ता आहिस्ता अदा करो तो माना क्या होगा, गिर जा, यानी इसको अगर हम जरा आहिस्ता से अदा करें ना तो माना क्या बनेगा, गिर जा। तो जिसने गिर जाना हो उसने क्या रहना, यही तो वजह है हर जगह गिर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बिक भी रहे हैं गिर भी रहे हैं। यानी आपने दुनिया की तारीख में सुना है कि किसी ने अपना मस्जिद बेची हो, ईसाई जो इस वक्त पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, जो अपने आप को जनाब सुप्रीम ताकत समझते हैं, उनके तो मजाक के जो गिरदी है वो बिक रहे हैं। क्योंकि लोगों ने जाना छोड़ दिया है, कोई वहां जाता नहीं है, और 20-20, 30-30, 50-50 एकड़ जमीन जो है वो गिरजों के साथ लगी हुई है, और वो जंगल है, वीरान है, खतरा है कि इन इमारतों में और कोई जरायम पेशा लोग जो है वो अपने घर न बना लें, इसलिए मजबूर हो गए बेच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर जगह खरीद के मस्जिदें बना रहे हैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह का शुक्र। अभी तो आप हैरान होंगे ना कि सिर्फ न्यूयॉर्क में 80 मस्जिदें हैं, कभी 2 मस्जिदें होती थी। अब तो अल्लाह तबारक ऐसे नहीं है कि वो बेचारे देखें कि भाई यहां कोई दाढ़ी वाला देखते हैं डरते हैं, उनको पता है कि ये तो हमारे घर में आ गए, ये तो हमारे मुल्क में जब चाहते हैं 10 मिलियन आदमियों की मार्च करा देते हैं सड़कों पे खड़े होकर, चाहे हम समझते हैं कि फराह खां कौन है, लेकिन उनके नजदीक तो मुसलमान है। ये तो हम जानते हैं कि अभी वो आली जाक मानने वाला है, उसको नबी समझता था, लेकिन उनको तो इन चीजों का पता नहीं, उनके नजदीक वो भी मुसलमान। तो बहरहाल खैर कहने का मकसद ये था कि बीबी उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि हम उस गिरजा में गए, वहां जो पादरी था वो हमें मिला, उनने हमसे पूछा कि कौन लोग हो, तो हमने कहा हम तो करैशी हैं, मक्का के रहने वाले हैं, हबशा में थे, अब हबशा से वापस मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। उनने कहा कि मैंने सुना है कि मक्के में एक नबी पैदा हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जानते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारे कबीले के। उन्होंने कहा अगर मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाऊं तो क्या आप पहचान लेंगे? अजीब बात है भी, हमारे तो कबीले के हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैं, और मैं अबू सुफियान की बेटी हूं, अबू सुफियान अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। उन्होंने कहा अच्छा, तो बड़ा खुश हो गया। वो कहती है बीबी साहबा कहती है कि हमें ले गया और एक अलमारी खोली, उसमें तस्वीर थी। हमने कहा ये तो नहीं है, फिर दूसरी खोली, उन्होंने कहा ये भी तो नहीं है, फिर तीसरी खोली, उसमें भी तस्वीरें थी, उन्होंने कहा ये नहीं है। उसने कहा अच्छा चलो अब बंद करो इनको, सबसे जाके उसने फिर आखिरी अलमारी खोली। आखिरी अलमारी जब उसमें खोली तो हमने जब तमसीर, हमने कहा हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद रसूल, उन्होंने कहा हाँ ये वाकई यही मोहम्मद रसूल, तुमने ठीक पहचाना। और उनके पीछे हमें 2 तमाशील नजर आई, तो उन्होंने कहा इनको पहचानते? उन्होंने कहा हादा अबू बकर हादा उमर, ये अबू बकर उमर है। तो यानी आप अंदाजा करें कि सबका अदवार में अहबार और रोहबान जो थे वो किताबों से पढ़कर तखय्युल के बिना पर अपनी तस्वीरें और तमसीलें बनाकर भी उन्होंने रखी हुई थी। तो जहां अल्लाह के नबी की तस्वीर

वो तो सच्चे नबी हैं। मुबाहले के लिए मुकाबले पे जाओगे ना तो कुछ नस्ल तक नहीं बचेगी, बहाना करो जान छुड़ाओ। उन्होंने कहा हजूर हम आपका मुकाबला नहीं करते, मुबाहला नहीं करते। इसीलिए कभी बादल मुकाबले पे नहीं आता। कादियानियत को हमारे चनियोटी साहब ने कई दफा चैलेंज किया, मिर्जा को, उनके बेटे को, फिर बेटे के बेटे को, फिर पोतों को, फिर पता नहीं उन्होंने, वो भी अल्लाह का बंदा माशाल्लाह जरी मुजाहिद है, किसी के बाप को भी नहीं छोड़ते। उन्होंने एक एक को चैलेंज किया, फिर यहां नहीं बल्कि यूरोप में भी जाके चैलेंज किया, और वहां जना हाइट पार्क में जगह मुकर्रर कर दी, ऐलान कर दिया, पूरी दुनिया का प्रेस बुला लिया, खड़ा आओ मुबाहला करो। लेकिन मिर्जाई भी समझदार है, उनको पता है हम झूठे हैं, कैसे मुबाहला करें। मुबाहला करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे हमेशा के। तो बहरहाल ये एक अलग वाक्या है मुबाहले का। तो अल्लाह के नबी इस आयत का मिसदाक जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, क्योंकि साफ बात है अपना आना में तो हजरत हसन हुसैन है। तो अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने उनको अनफुसना अपने गोया के वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने मुश्तरक हैं, जैसे एक रिवायत में आता है हजूर ने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, कि अगर हजरत अली तुम मुझसे हो मैं तुझसे हूं, यानी हम तो एक नस्ल से है ना, एक नस्ल से है ना, एक दरख्त से हैं, एक शाख से हैं, हम तो अलहदा नहीं। तो ये मकाम जो है वो भी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है और किसी सहाबा को नहीं। और इसी तरह याद रखेंगे ये मकाम जो है कि जब मेरे आका सरकार दो आलम रहमत दो जहां सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ ले आए, हिजरत फरमा ली, और फिर मदीने मुनव्वरा में मुहाजिरीन अंसार जो थे, क्योंकि अब मुहाजिर तो बेचारे इस हाल में आए ना कि बिल्कुल है कुछ नहीं, अंसार जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम उनके घर थे, बाग थे, खजूरें थी, वो तो सेट थे ना, उनका तो अपना घर था, वतन था। मुहाजिरीन तो मक्के से हिजरत करके गए थे और जिनके पास कुछ भी नहीं था, अगर था तो सफर में खत्म हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अंसार को बुलाओ, मुहाजिरीन को बुलाओ। अंसार के बड़े बड़े कबायल जो थे वो औस व खजरज थे। जब सहाबा आ गए, अंसार आ गए, मुहाजिरीन आ गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमन्ना ये है कि अब इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं चाहता हूं कि मुआखात कायम कर दी जाए कि एक अंसारी जो है ना वो एक मुहाजिर को अपना भाई बना ले। यानी ये मुआखात इस्लाम में जो है ये सबसे पहले ये फलसफा भी अल्लाह के हुक्म से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। और कितना आला हल है कि एक आदमी अपना अपना भाई बना ले और अपने घर को अब एक बंदे को, एक खानदान को संभालना तो मुश्किल नहीं होता। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बुलाते जाते थे कि हाद आखी रिहाद, अच्छा एक अंसारी एक मुहाजिर, एक अंसारी एक मुहाजिर, तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, सबको जब भाई भाई बना दिया तो खुदा की शान है कि आखिर में हजरत अली रह गए। जब सारे मुहाजिर और अंसार भाई बन गए तो हजरत अली आ गए, खड़े हो गए, उन्होंने कहा रसूलल्लाह आखिरी तो मैंने मुहाजिरीन और अंसार, आपने सब मुहाजिरीन अंसार को भाई भाई बना दिया, मैं किसका भाई बनू, मैं तो रह गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, आपने फरमाया अली तुम मेरे भाई हो, मोहम्मद तेरा भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तुम क्यों परेशान होते हो, अंताखी तुम मेरे भाई हो ना, मैं जो तुम्हारा भाई हूं तो तुम्हें किसी और के भाई बनाने की क्या जरूरत है। तो ये मकाम जो था ये भी सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला कि जिसको हजूर फरमा देंगे मेरा भाई। वैसे तो हजूर के बेटे हैं, हजूर की औलाद हैं, हजूर के इब्ने अम हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, और फिर ये है कि नस्बन हसबन हर लिहाज से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल खालिस सोना है। यानी बाप के नस्ब से देखा जाए, माँ के नस्ब से देखा जाए, बाप अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है और माँ कौन है, फातिमा बिनते असद बिन इब्ने हाशिम है। और फिर उसके बाद सिहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के दामाद हैं, और सैयदा फातिमा अज़ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं, और फिर आप जो हैं यानी हुजूर सल्लल्लाहु

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम।
3: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
2: मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
3: शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: इज़ा समाउ फतरत।
3: जब आसमान फट जाएगा।
2: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
3: और जब सितारे झड़ पड़ेंगे।
2: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
3: और जब दरिया उबल पड़ेंगे।
2: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
3: और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी।
2: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
3: हर शख्स जान लेगा जो कुछ के उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा।
2: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
3: ए इंसान, तुझे किस चीज ने अपने रब करीम के बाब में भूल में डाल रखा है।
2: अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक
3: जिसने तुझे बनाया फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया फिर तुझको एतदाल पर बनाया।
2: फी अय्य सूरतिम मा शा रकबक
3: जिस सूरत में चाहा तुझको तरकीब दे दिया।
2: कल्ला बन तुकद्दिबून बिद्दीन
3: हरगिज़ नहीं बल्कि तुम जज़ा व सज़ा को झुठलाते हो।
2: इन अलैकुम लहाफिज़ीन
3: और तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं।
2: किरामन कातिबीन
3: वो निगहबान इज्जत वाले हैं और तुम्हारे अमल को लिखने वाले हैं।
2: यअलमून मा तफअलून
3: जानते हैं जो कुछ तुम करते हो।
2: इन्नल अबरार लफी नईम
3: बेशक नेक लोग बहिश्त में होंगे।
2: व इन्नल फुज्जार लफी जहीम
3: और बदकार लोग बेशक दोजख में होंगे।
2: यस्लौनहा यौमद्दीन
3: उस दोजख में इंसाफ के दिन डाले जाएंगे।
2: वमा हुम
3: और उससे जुदा होने वाले न होंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपको खबर है कि वो रोज़े जदा क्या है। फिर भी आपको क्या खबर है कि वो रोज़े जदा क्या है।
2: यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ والامر يومئذ لله
3: जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स का कुछ भी भला न कर सकेगा और तमाम तर हुकूमत उस दिन अल्लाह ही की होगी।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: वैलुल लिल मुत्तफिफीन
3: बुरी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों की।
2: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون
3: कि जब लोगों से नाप कर लें तो पूरा लें।
2: وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
3: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔
2: أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
3: کیا ان لوگوں کو اس کا خیال نہیں کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔
2: لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
3: ایک بڑے سخت دن میں۔
2: يوم يقوم الناس لرب العالمين
3: جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
2: كلا ان كتاب الفجار لفي سجين
3: ہرگز نہیں بدکار لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہے۔
2: وما ادراك ما سجين
3: اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ سجین کیا ہے۔
2: کتاب مرقوم
3: وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے۔
2: ویل یومئذ للمکذبین
3: اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔
2: الذین یکذبون بیوم الدین
3: جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
2: وما یکذب به الا کل معتد اثیم
3: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گنہگار ہو۔
2: اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین
3: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جائیں تو کہہ دیتا ہو کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
2: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
3: هرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے
2: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
3: هرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے
2: ثم انهم لصال الجحيم
3: پھر یہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے
2: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
3: پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول

तालीम को मुबारक करे और आइंदा साल जब इम्तिहान में आप कामयाब हों तो माँ बाप खुश हों। और इसके साथ ही जो है दुनिया असल में जो है एक होता है कि दुनिया की रंगीनी है और एक होता है जो है हवाई बातें होती हैं और एक होता है हकीकत से आप कहते हैं आंख चुरा देना और एक होता है हकीकत होती है। तो हकायक कभी बदलते नहीं है खुश फहमी के साथ, हकायक को हमेशा आप मद्द नजर रखें। हकायक को तो आप देखेंगे तो फिर उस हकायक पर देखेंगे तो आपको जो उसमें खामियां भी नजर आएंगी उसकी इसलाह की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल बड़े इस दावा की इस हफ्ते की खुशी ये भी है कि हमारे पाकिस्तान में 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाई गई है, यहाँ भी धूमधाम बनाई गई है, 14 अगस्त मनाई गई है और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में फिर अपने मुल्क का कौमी दिन देखने का मौका दिया और इस मुनासिबत से जो है वो हमारे राजा अब्दुल गफूर साहब को शील्ड मिली है, ये भी हम उनको मुबारक देते हैं। और आप वाकई अपने कौम के लिए और जो आप अपने मुल्क के लिए खिदमात पेश करते हैं और मुसलसल ये जो है बगैर कता के जारी जारी रहती हैं तो आप इसके हकदार हैं कि आपको शील्ड मिलने चाहिए। बहरहाल ये मुबारक हो आपको, आपकी टीम को और अल्लाह ताला हमें हमेशा अपने मुल्क का वफादार बनाए और मुल्क की जहाँ 14 अगस्त पर बड़े बड़े प्रोग्राम बने हैं लेकिन जहाँ आप हम अपने मुल्क की आज तकरीबन 70वीं जो है सालगिरह बना रहे हैं और 14 अगस्त बना रहे हैं तो वहां पर हमें जो है कुछ हकायक हैं उस हकायक का भी निगाह रखनी चाहिए और फिर उसके लिए हम कोशिश भी करें उस हकायक को ठीक करने के लिए और दुआ भी करें कम अज कम उसके लिए। एक तो ये है कि यहाँ ऐसे लोग हैं अपनी जात है खा रहे हैं पी रहे हैं बस ठीक है जी इतना ही है, देख रहे एक वो लोग होते हैं जिसकी निगाह ये भी होती है कि हमारा मुल्क जो है वो इतना अरसा हो गया बने हुए, उस मुल्क की तामीर तरक्की क्या हुई है, उस मुल्क में बसने वाले हैं उन लोगों की क्या हालत है, इतना अरसा गुजर गया फिर हम मुकाबला करते हैं कि हमने दूसरे जिन लोगों ने हमारे साथ आजादी हासिल की थी हमारी उम्र से मुल्क की उम्र से जो छोटे मुल्क हैं वहां उन्होंने क्या तामीर तरक्की की है। ये हकायक जब हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी कि उसकी वजह से हमें जो है खुशी के साथ साथ बड़ा दुख भी होता है कि इतना अरसा हो गया हमने किया क्या है, हमने क्या किया, हमने इस मुल्क को ये तो बड़ी आसानी से कहते हैं कि कलमा तैयबा के नाम पर मुल्क बना था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आज इतना अरसा गुजरने के बावजूद ये भी आप देखें कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने करीब हैं कितने दूर हैं, अल्फाज तक ही है ना लेकिन ला इलाहा का माना जो पाकिस्तान जिन्होंने अल्लामा इकबाल ने जो उसका एक तसव्वुर पेश किया ख्वाब देखा था मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने जो कहा था कि हम पाकिस्तान इस बना करके हम अपना एक जो है इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो उन चीजों को आज देखें हम उस मकसद से आज भी हम कोसों दूर हैं बल्कि दिन ब दिन दूर चले जा रहे हैं जो है आज हमारे मुल्क के अंदर जहाँ हमारा मुल्क आज है हम देखते हैं कि इस आज जो है नंबर में अगर आप देखेंगे कि हम करप्शन में हम कितने जो है पीछे है और इस करप्शन करने में कितने आगे है और आमान उसमें अगर नंबर में आप देखेंगे तो हर तनजुल के एतबार से हर जो है नाकामी के एतबार से हमारा नंबर जो है वो सबसे आला नंबर है, हमारा जो एक ही नंबर में आगे है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर बदअमनी है परेशानी है गुर्बत है, आज हमारे मुल्क के हजारों नौजवान दो वक्त की रोटी के लिए वो जो है कहाँ कहाँ चले कुर्बानी दे देते हैं कि समुद्रों की मछलियों का गजा बन जाती हैं, आज भी हजारों नौजवान पाकिस्तानी अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए के लीबिया को जेलों के अंदर है सऊदीया को जेलों के अंदर है कहाँ कहाँ जेलों में पड़े हुए हैं और वो नौजवान किस वजह से सिर्फ अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो अपने मुल्क के अंदर उनको तरह तरह की परेशानियां हैं, तो इस तरफ भी आप लोग सोचा करें, ये नहीं होता कि बस इतना काफी है केक काट के खा लिया और कपड़े सबज पहन लिए तो भाई जो जिंदा कौमें होती हैं अपना मुहासबा भी करती हैं, आप मुहासबा करें कि और मुहासबा जब करेंगे जो लोग जो है इकतदार के अंदर हैं जो अरबाब इकतदार हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन सब का भी कहेंगे कि भाई जहां हमने जो है इस कौमी खजाने से इतना आलोक इस मुल्क को आपने दिया क्या है, इस मुल्क को आप

0: क्या मिला आज भी, अगर यहाँ की एम्बेसी के अंदर आप लोगों के लिए इस पूरी खिदमात आपको मिलती है, इस तरह से मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी अगर आपको परेशानियां होती हैं, आपके काम को ही नहीं करता है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों मेरा मुल्क इस चीज में पीछे है। ये इस मुल्क के अंदर जो है, और जो आजकल जो हालात बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान खतरा से घिरा हुआ है, परेशानियों के घिरा हुआ है, और पाकिस्तान के दिन ब दिन दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीजें इस पर हमें और फिक्र करना है। और मुल्क के लिए, अच्छाई के लिए अमली तौर से कुछ कर सकते हैं उसकी कोशिश करें और दुआएं भी करें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों को अल्लाह ताला सलामत रखे हर बुरी निगाह से, हर बुरी जो है कोशिशों से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमारे औलादों की हिफाजत फरमाए। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: सामाईन नाजरीन, आप खिताब समात फरमा रहे थे हज़रत मौलाना फारूक सुल्तान साहिब का। सामाईन नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं। अगर कोई बात करना चाहे, कोई अपनी राय देना चाहे, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और आप सबको पहले से मालूम है कि सफारत खाना ने पहले इतला कर दी थी कि 14 अगस्त को वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं हमेशा की तरह। इस दफ़ा भी वो 14 अगस्त को अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सामने नाज़रीन, चूँकि हम पब्लिक के आदमी हैं, आवाम के आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि लाइव मालूमात आपको मिले, आपको दावतें, ये दावतें आम होती है। तो इस वक्त अवामी सफ़ीर पाकिस्तान जनाब मोहतरम शुएब सरवर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शुएब साहब, एक बार फिर खुश आमदीद।
2: जी, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपको और तमाम कम्युनिटी मेंबरान को जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं।
1: शुएब साहब, आपने बड़ा बिजी ये साल गुजारा, ये जो साल नया 2026 का है, इसमें आप बहुत ज्यादा बिजी रहे। पहले कुराने में तो आपको वो टाइम नहीं मिला था, आपने सारी मसरूफियात की जो है वो कसर निकाल दी। मैंगो फेस्टिवल्स हुए, इस दफ़ा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आम जो है वो बिका डेनमार्क की हिस्ट्री में, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए इंफॉर्मेशन के हवाले से, आपकी मुलाकातें भी हुई। अब 14 अगस्त को प्रोग्राम हमेशा की तरह आ रहा है, तो 14 अगस्त के हवाले से अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे?
2: जी, ये हर साल की तरह जी हम इंशाल्लाह इस दफ़ा भी 14 अगस्त की जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है और वो 10:30 बजे जी एम्बेसी में है, और तमाम पाकिस्तानियों को जी इनविटेशन है कि वो अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आएं और इस प्रोग्राम में जी शिरकत करें। और इंशाल्लाह इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह आप लोग, मुझे उम्मीद है कि लार्ज नंबर्स में पाकिस्तानी आएंगे। और ये साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक उसमें खसूसियत है कि ये कायद आजम के 150वीं सालगिरह है पाकिस्तान, उनकी पैदाइश की। तो ये हमारे लिए जो 2026 है का जो जश्न आज़ादी है वो एक डबल एक खुशी का एक मौका है। और ये इस वक्त हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं जब आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफें हो रही हैं, और जो पाकिस्तान जो एक रोल अदा कर रहा है दुनिया में बैनुल अक़वामी अमन के लिए, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और उसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो मुकाम है वो बहुत बुलंद है मुख्तलिफ अकवाम में, और दुनिया हमारे इस रोल को अप्रिशिएट भी कर रही है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को इनवाइट करता हूँ आपके रेडियो के तवसत से, सोशल मीडिया पे भी हमने एडवर्टाइजमेंट दी है कि जी के तमाम लोग आए फैमिलीज के साथ और ये हमारे साथ जो यौम आज़ादी को मनाएं जी।
1: सफीर पाकिस्तान, ये दावत आम है ना?
2: जी जी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जी, बिल्कुल, जो डेनमार्क में रहते हैं।
1: सफीर पाकिस्तान, चूँकि आपको पता कि दुनिया में जो कानून कायदे सिक्योरिटी का इंतज़ाम, इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहें?
2: जी, वो जो है जो सिक्योरिटी के मामलात वो जो है वो डेनिश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और हमें उनके हमेशा से उनका मुकम्मल इस बारे में तआवुन रहा है, और वो होस्ट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से इस बारे में आगाह है जी। तो आप हमेशा की तरह जी आप आए जरूर और इंशाल्लाह हमारे साथ ये खुशियों में शरीक हूँ।
1: बड़ी खुशी की बात है, आपका भी इसमें बड़ा हाथ है। इस दफा पाकिस्तान का आम डेनमार्क की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बिका।
2: जी जी, अल्लाह का शुक्र है जी, जो पाकिस्तान का जो मकाम इस वक्त दुनिया में है हमारी सफारतकारी की वजह से, उसकी हर जगह अप्रिसिएशन है। और ये यकीनन जो इस वक्त डेनमार्क के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उस दिन आपके लिए आप शायद कोई खसूसी पार्टिसिपेंट भी उधर हो, तो इंशाल्लाह जो कि इस चीज की रिफ्लेक्शन है कि जी के हमारी इस वक्त ताल्लुकात किस लेवल पे हैं डेनमार्क से, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मजबूत फर्दर होंगे। और उसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी जी डेनमार्क में बड़ा रोल है, जो कि इस सोसाइटी का, इस मुल्क का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क की तमाम फील्ड्स में।
1: सफीर पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया।
2: शुक्रिया जी, और मैं इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद है कि जी परसों हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: سامعین ناظرین، یہ تھے سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب، جن کا آپ اوپن میسیج سن رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ دعوت عام دیتے ہیں، اوپن ان کا میسیج ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ آ سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو آپ کو پاس ٹائم ہے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اپنے ملک کا جو پیار ہوتا ہے وہ سب کا پیار ہوتا ہے، کسی امبیسڈر صاحب کا نہیں، سب کا ہوتا ہے، پاکستان سب کا، کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے۔ تو جب سفیر محترم آپ کو دعوت دے رہے ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त हमारे थिंक टैंक सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब और तजिया निगार अदनान अली अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं आपकी आवाज पर।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टर को और अदनान हमारे साथ है, इनको सबको सलाम अलैकुम। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, सबसे पहले मौसम का हाल जानना चाहेंगे। आवाज चल रही है, स्कूल सुबह खुल रहे हैं, आप क्या कहेंगे बच्चों को?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौसम जो है वो 20 और 22 के दरमियान है इस वक्त, डिग्री का मौसम अच्छा है और बच्चे जो है कुछ कल स्कूल जाएंगे और कुछ जो है वो मंगल को। ज्यादातर जो स्कूल है वो इन मंगल 10th को खुल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यही है कि बच्चों को भी ये बताना पड़ेगा कि क्योंकि बहुत सारे पहली दफा स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली दफा नई क्लासों में एंटर हो रहे हैं, यानी कि उनके जो पुरानी क्लास थी अगर वो 5वीं में थे तो वो 6ठी में जा रहे हैं और 6ठी

0: में थे तो वो साथी में जा रहे हैं, तो हम उन सबको आपके इदारे की तरफ से, अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चीज है वो हमें देखना पड़ेगी कि अगर हम फुटपाथ पे जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, तो हमें मासूम बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बानेवन और वोगस टू जाते हैं वो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, और वो आसानी से पेरेंट्स उनको स्कूल पहुंचा दे, बानेवन में पहुंचा देते हैं। लेकिन जो पहले बच्चे होते हैं, पहली या दूसरी क्लास में जाने वाले, वो अभी रोड्स के जितने भी तफसात होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उनसे वो वाकिफ नहीं होते, तो लिहाजा उनके उनकी बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि वो फुटपाथ के नजदीक खड़े हैं या वो क्या। तो इसमें हमें बकायदा उनको रास्ता देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और उनको इत्मीनान से जो है वो सड़क क्रॉस करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब छोटी क्लास में होता है तो उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, इतनी उसको होशबंदी में नहीं होता, या वो इतना ज्यादा सीखा नहीं होता। हालांकि यहाँ पे वो स्कूलों में बकायदा बच्चों को सिखलाते हैं, और ये शुरू हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद बच्चे आपको जेब्रा क्रॉस और फुरिंगांग के ऊपर खड़े हुए नजर आएंगे, और वो ड्यूटियां दे रहे होंगे कि बच्चे कैसे किस तरीके से सड़क को क्रॉस करते हैं। वो अपने छोटे छोटे स्टिक्स जिसके आगे येलो कलर लगा होगा उसको लेके खड़े होंगे, और वो बकायदा आपको स्टॉप करने का और रास्ता आपको गाड़ी रोकने का पूरा पूरा जो है वो इशारा करेंगे। तो ये पेरेंट्स के, हर आदमी के ये फर्ज है कि जहां आप उन बच्चों को देखें तो आप गाड़ी को स्पीड लिमिट कंट्रोल कर लें, और ये याद रखें कि इस जगह जहां पे स्कूल है वहां पे गाड़ी की स्पीड लिमिट जो है ऑलरेडी 30 और 40 होती है, और इससे ज्यादा आप स्पीड नहीं कर सकते, लिहाजा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और जहां आप देखें कि अब वो बच्चे फुटपाथ पे चलना शुरू हो गया, तो आपको गाड़ी को जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए ताकि वो इत्मीनान से जो है वो सड़क क्रॉस कर ले। जी राजा साहब,
1: अदनान आपने बातें सुनी शाह साहब की, आपका तजिया क्या कहता है?
2: सही है, बात सही की गई है कि पहले दो दो तीन दिन बच्चों के लिए प्यार करनी चाहिए और बच्चों को मदद करनी चाहिए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो ये स्कूल कुछ स्कूलों को ट्रेन किया गया है वो फिर बाहर आते हैं और मदद करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे जो हैं बच्चों के लिए कोई मिसाइल ना हो, कोई मसला ना हो। तो जरूरी यही है कि बच्चों को क्या कहते हैं बंदा देखे, और बच्चों को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करे और उनकी मदद करे।
1: शाह साहब, ये अदनान की भी बात आपने सुनी, बच्चे स्कूल की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, उन्होंने जो कुछ शॉपिंग करनी थी वालदैन ने करवानी थी बच्चों ने कर ली है। बच्चे तो नहीं सोचते कि अखराजात अच्छे खासे हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो अब बच्चे कॉलेज भी जो है वो शुरू करेंगे। तो शाह साहब, इसके साथ साथ ये जो नए स्कूल खुले हुए, मेला वाले स्कूल खुले हुए हैं, बहुत सारे ज़्यादा मेला हो चुके हैं, और शाह साहब अब लगता है कि पाकिस्तान पीछे रह गया, आम आगे निकल गया, मेला आगे निकल गया, कायदे आज़म जो है वो नहीं रहे, चूँकि वो फौत हो चुके हैं रहमतुल्लाह, इल्लामा इकबाल नहीं रहे, अब जो है वो मैंगो ही रह गए हैं, आप क्या कहेंगे?
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि मैंगो फेस्टिवल जो है वो बढ़ चढ़ के यहाँ पे एक बिजनेस जो है वो टाइकून बन चुका है। यहाँ पे लोग अब एक किस्म का इसको पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं, लेकिन जो मुश्किलात हैं लोगों की, पार्किंग की, दूसरी कानून का, जितने भी मेला लगाते हैं लोग या जो वहाँ पे लोग आते हैं, उन उनकी उनकी कानून की जो है उनको समझ नहीं है। यहाँ पे गाड़ियां हमने रख ली हैं, हमें यह तमीज नहीं कि हम इनको कहाँ पार्क करें, किस तरह पार्क करें। अगर हम किसी की पार्किंग प्लेस में जाके अपनी गाड़ी उस पार्किंग के अंदर खड़े कर रहे हैं, तो वहां के जो विलकोर है, वहां का जो पार्किंग का जो निजाम है, उसके जो स्किल्ट लगी हुई है उसको हम नहीं पढ़ते, और हम अपनी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। इससे ये होता है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनको डिफिकल्टीज आती हैं, उनको प्रॉब्लम पेश आती हैं, और वो जब घरों में आते हैं शॉपिंग करके या कहीं बाहर से, तो वो देखते हैं कि हमारी सारी की सारी पार्किंग जो है वो भरी हुई है। हालांकि अमूमन मैं खुद इस एरिया में रहता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कम से कम 5-6 गाड़ियों की जगह जो होती है वो हर रोज रात को खाली होती है। अगर किसी का मेहमान आ जाता है या कोई बाहर से बंदा आ जाता है तो वो गाड़ी जो है एक्स्ट्रा गाड़ी वहां पे खड़ी कर सकते हैं आसानी से, और उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ जो फ्री पार्किंग थी, अब इस इलाके में भी जो है वो बकायदा आधे घंटे की पार्किंग हो गई है, और बहुत प्रॉब्लम हो गई है लोगों को कि लोग बाहर से आके अपने जो है वो फंक्शंस के ऊपर लोगों के पार्किंग के अंदर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों के जो है ग्रास प्लान जो है जहाँ घास लगा हुआ उसके ऊपर और फुटपाथ के ऊपर और ऐसी जगह पे, तो ये तो प्रॉब्लम जो है ये एल्बर्ट राउंड में बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी सियासी वजूहात भी है, और कुछ वजूहात ये है कि हमारे जो प्लानर्स हैं जो ये प्लान ले करते हैं कि भाई हमने किस तरीके से ये जगह को चलाना है, तो कल पुलिस से बड़ी क्लियर बात हुई है, दनान भी इस पे बात करेगा, इसकी भी हुई है, मेरी जो बात हुई है तो मुझे उन्होंने कहा है, पुलिस वालों ने उन्होंने कहा है कि देखे ये आप लोगों का मेला है, हम इसको जो है आपको तंग करने के लिए नहीं आए, लेकिन लोगों ने इतनी ज्यादा शिकायत की है तो हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है, और अब आप ये देखे कि लोगों लोग जो है इनको हम मना कर रहे हैं कि आप इस तरफ ना जाएं, आगे जाके कहीं गाड़ी पार्क करें, तो फिर भी वो हमारी बात नहीं कर रहे, ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो इसका क्या तरीका है, इन्होंने तो इजाजत ली हुई है यहाँ पे अपना फेस्टिवल करने का, तो आप लोगों को चाहिए कि इनको इनके लिए आसानी पैदा करें। तो पुलिस वालों ने कहा कि ना कम्यून ने हमें इन्फॉर्म किया है और ना ही इन्होंने हमसे इजाजत ली है, अगर ये हमसे इजाजत ले लेते तो हम यहाँ पे सख्ती ना करते, बल्कि इनके लिए कोई ऐसी हदायत जारी करते, ऐसा कोई रास्ता अख्तियार करते कि यहाँ ये आसानी से अपनी गाड़ियां पार कर लेते और इनको जुर्माना भी ना होता। तो ये पुलिस ने हैरानकुन बात की कि हमारे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं, और इनको इस चीज का इलम नहीं कि किसी की पार्किंग प्लेस पे अपने जहाँ नंबर लिखा हो उसके अंदर अपनी गाड़ी नहीं खड़े करते। तो ये सब कुछ तो मैं खामोशी से सुनता रहा, लेकिन हम अब अदनान की तरफ जाते हैं, इससे पूछते हैं क्योंकि ये कल वहां पे मौजूद था, तो इसकी भी पुलिस से बात हुई है, तो ये क्या कहता है कि वो क्यों क्यों इतने ज्यादा पुलिस आ गई थी जी अदनान?
2: देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता और किसी के इवेंट पे बात नहीं करना चाहता, और मैं किसी को क्या कहते हैं कॉमर्स नहीं करना चाहता इस तरह का, क्योंकि देखें मैं आपका थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। इसमें दो वजह है, इसमें मुझे पता है कि इस पे बहुत सारे लोग टारगेट भी होंगे और बात भी होगी, मगर ये बात अब जहां तक मुझे खतरा नजर आ रहा है तो ये नजर आ रहा है ये बात आगे तक जाएगी और डेफिनेटली पुलिस ने तला देनी होती है कानून वालों को जब इस तरह का इवेंट हो, क्योंकि मसला ये है कि राजा साहब आप तो नहीं, मैं और अंकल मेरे दोनों हम यहाँ रहते हैं और हम दोनों इस एरिया में रहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे मेरी लोगों से भी बात हुई है आज सुबह ही हुई है मेरी अभी, और वो लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि वो अपनी प्रोग्रेस को भी और एडमिशन को मून को भी अफेक्ट लिखेंगे अपनी प्रिस्टिशन की वजह से जो उन्होंने मुझे कहा है। एक बात ये है, अब वो क्या लिखते हैं इससे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको एक छोटी सारी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने जब मैंगो फेस्टिवल किया था ना 11 जुलाई को, पहला जो हमने मैंगो फेस्टिवल किया था उसके अंदर मुझे इतला मिली थी कि ये मसले हैं। जब मैंने बात करने की कोशिश की थी वहां पर, मैं उसके मुंह पे भी कहने की तैयार हूँ क्योंकि मैं उस बंदे की पहले भी मैंने बड़ा उसका है मेरा उसके साथ, वो मजाक मेरा उड़ाने लग पड़ा था और इस चीजों पे था, तो मैंने उसे गुस्से में मैंने कहा उसे डायरेक्टली कहा था, मैंने कहा तुम मुझे जो मर्जी कहो, मैंने आयन और कानून की बात करनी है, तुम मुझे पागल समझते हो ना तो फिर तुम पागल हो, मैंने डायरेक्टली जो बात है मैंने आज आपके प्लेटफॉर्म में कह दी, मैंने कहा तो तुम पागल, मैंने कहा तुम्हारी वजह से ही मेरे वोट जो है वो हुए थे, क्योंकि लोग जब तुम मेरे कंपेन में आए थे तो लोगों ने कहा था कि तुमने इस बंदे को रखा है, हमने वोट ही नहीं देना, जिसको पता ही नहीं बात कैसे करनी है, सीरियस कब होना है, ये चीजें क्या होंगी। कल भी वही हुआ है कि मसला ये हुआ है कल के आप जब प्रोग्राम कराते हैं ना, खान साहब को पता है, राजा साहब आप भी आए हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम अंदर कराते थे, हम बाहर नहीं निकले कभी हॉल से वहां पे, तो इसलिए पुलिस नॉर्मल जब आती थी ना तो वो कुछ नहीं थी कहती, या कुछ क्या कहते हैं कुछ एरिया से नहीं थी कहती। मगर मसला ये हुआ है कि 23 मई को ना जब हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ, उससे पहले एक हफ्ता पहले इन्होंने ना ओवेस्ट जो कंपनी है बुहारी साहब आपको पता है, उनने कुछ सख्तियां कमून के साथ मिल के उन पार्किंग में कर दी थी। सबसे पहले ये कि शाम में एक कपोट होता है, आप सबको पता है जिनने लाइसेंस लिया होगा, कि जिसका सबसे पहले कपोट जिसने गाड़ी अपनी खिलानी होती है ग्रास में, उसने अपना ग्रास खरीदा होता है, जब आप उसके अंदर गाड़ियां लोगों के अंदर खड़ी करने लग पड़ेंगे वो लोग बहुत सख्त बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप बाहर इन्वेंट करते हैं ना तो आपने कमून से परमिशन लेनी होती है, आप कोई इन्वेंट नहीं कर सकते परमिशन के बैग, आपने पुलिस को कमून को भी देनी होती है और पुलिस को भी कॉपी देनी होती है। मैं जब घर से जा रहा था, मैं जा रहा था सौदा लेने अपनी फैमिली के साथ, जब मैंने पुलिस को देखा, मैंने देखा कि दो पुलिस की गाड़ियां बस स्टॉप पे खड़ी हैं, और फिर मैंने, मुझे नहीं पता आपने देखा अंकल के नहीं, मगर आपको पता है वो जो बोन फोर्ट है जहां से वो डॉक्टर की तरफ है, वहां पे भी दो गाड़ियां पुलिस की खड़ी थी, मतलब टोटल चार गाड़ियां मैंने पुलिस की देखी है। जब मैं वापस आया हूँ ना क्या कहते हैं हाल की तरफ सौदा लेके, तो पुलिस दूसरी साइड पे खड़ी थी, सिल्वन कपड़ों में भी खड़ी थी। मैंने उनसे पे बात की, मैंने कहा आप इस तरह क्यों आए हैं और क्या वजह है, क्योंकि आपको पता है मेरा भी पता है, डेफिनेटली उनको पता है क्योंकि डिप्टी काउंसिल हूं मैं और अपनी पार्टी के अंदर मेरे अहदे हैं और खैर वो भी मैं उनके साथ हूँ। तो उसने भी मुझे कहा कि मसला ये है कि इन्होंने ना गाड़ियां पूरी गाथलैंड में भी खड़ी शुरू कर दी थी और बस स्टॉप के तरफ थी। हमने फिर इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग हमसे तामन करें, और हम इनको बता रहे थे कि आइंदा से आप जब करेंगे ना तो पुलिस क्या कहते हैं, जिस तरह ये होता है ना कानून, जिस तरह अप्लाई करना होता है, जिस तरह हमने अपने सेकंड इवेंट में अप्लाई किया था, उन्होंने कहा था ठीक है हम पुलिस को सलाह दे देते हैं, और उन्होंने कहा था हम सलाह दे देते हैं, इजाजत के बारे में कहा था आपने क्यों लेट किया, क्योंकि कुछ कानूनी कायदे होते हैं उसके पीरियड में आपने अप्लाई करना होता है, तो मुझे नहीं था पता जो बात है, क्योंकि मैं तो मुझे नहीं था पता कि वो लोग इधर एक और मसला पड़ा है वो ये है कि ये जो जगह है ना जहाँ पे ये जिस जगह पे इन्वेंट्स कर रहे थे, मुझे पता है बड़े लोग बात करेंगे, बड़े लोग स्वागत करेंगे, मगर मसला ये है कि ये जगह जो है ना ये खुशी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी को प्रेयर प्रोग्राम के लिए दी जाती है, तो वहां पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहां पे गुजर रही थी और वो कह रही थी हमें क्यों नहीं मिल सकती जब इनको मिल रही है, तो वो एक अब सर्टनी दो डिबेट हो गए कि पार्किंग के भी और ये भी, मगर पार्किंग का ये है कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको पार्किंग का पूरा बंदोबस्त करना होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर में लिखा हुआ। अब मुझे नहीं पता कि इन्हें क्या परमिशन दी हुई थी क्या नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान की तरह चल रहे हैं, और ये इसका
0: नहीं अदनान मैं आपको साफ करूंगा, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली और कभी परमिशन नहीं ली, अगर उन्होंने परमिशन ली होती तो पुलिस कभी भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि वो आकर तो लोगों की सहूलत के लिए जगह मुहैया करती है। उन्होंने कहा कि ना कम्यून को पता है इस चीज का और ना हमें इलम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। ये मेरे साथ उन्होंने बकायदा उनकी जो लोग खड़े थे वहां पे जो कमेटी के बंदे थे जिन्होंने येलो जैकेट पहने उनके सामने पुलिस वालों ने मेरे साथ ये बात की है।
2: आप सही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आप परमिशन ली हो तो फिर पुलिस ऐसा नहीं करती, क्योंकि आपको मैं अब एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे मेंट पे वो दो या तीन दफा गुजरे हैं और उन्होंने बस ये देखा है कि गाड़ियां ठीक है, रास्ते ठीक है कि नहीं, वो निकल गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने तीसरी दफा जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा اب آپ تیسری دفعہ آئے نا, آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے, اور جو آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ پومیسٹا آ رہے ہیں اور کچھ بندے آ رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جگہ ان کے لیے سیف ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کا مسئلہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان کو ماریں گے, رننگ کیا کریں گے. میں نے کہا یہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس پوائنٹ سے آئے ہیں, ہم ویسے نہیں آئے. ویسے اس نے کہا ہمیں پتا ہے کہ آپ نے پرمیشن لی ہوئی ہے اور آپ کو اجازت ہے اس کرنے کی, اور آپ کی مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا وہ کوئی,
0: لیکن عدنان ایک سوال ہے, عدنان ایک سوال ہے کہ جہاں پہ ہمارے کمیونٹی کے کونسلر بھی وہاں پہ موجود تھے, اس کو ارینج کرنے والے بھی موجود تھے, وہاں پہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں یہ عوام کو بتاتے, کیوں نہیں یہ قانون کو پڑھ کے جاتے اور کہتے کہ یہاں پہ کمیون کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, پولیس کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, یہ عام عوام کو کیوں نہیں بتاتے, اور کیوں یہ پاکستان والی حرکتیں یہاں پہ کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے
2: انکل. دیکھیں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں نے کل بھی کچھ بندوں کو کہا, میں نے کہا کہ پلیز آپ اب اسی طرح بیٹھیں اور ہم بات چیت کریں, کیونکہ آئندہ سے آپ مینٹ تو کر لیں گے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنے.
0: عدنان میں آپ کو سٹاپ کروں گا, چودھری ولایت صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।